सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

तिमलाई चाहिने पैसा मलाई चाहिने दिन कति पर्छ भन गरौ आज दिन मरि जाने चोला गर्नु पर्छ चिल गर्न देऊ न मलाई पनि त्यो जवानीको फिल छातीमा काँसो बोटी पिउँछु हल्का रङ तिमी बिना कल्लो कल्लो लाग्छ कसम छिमेको कम्प अनि मजाको बम देखा आउँछु तिमीलाई आज बोस्टेको दम झुम छाङ लजिङ अनि थिटे गवाल फिर फिर सासु अनि केला तानी फुमुला मलाई थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम थुम

0: समाचारको साथमा हुने नै छौ। तपाईँ रेडियो सुन्दै रहनु होला।
1: ए केटा, ल्याइस त भगवानको मूर्ति, नछैकन अलग्ग राखिदिए है त्यही।